0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: हो जा दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे, चुप हो जा अपने लाडले फूफा के भतीजे। लोरी
2: लोरी लोरी

जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो

0: कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न हुमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
2: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: चमन।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
1: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ।
1: अरे बाप रे बाप,
0: डर गया ना।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे

तो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध

ध्यान कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीर्थ ना।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म

0: जो रहो तो।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: तू माने या ना माने दिलदारा
5: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band
6: book your tickets now on Eventbrite for sponsorship inquiries call 07949-250-376
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे
14: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
13: ये तो बताओ कोई पता चला
14: गुरु गुरु
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
13: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
16: टू बुक कॉल 0208-514-5400 Book online at Eventbrite.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Big Boss में इस बार मिलेगा बरदान और extra जीवन दान. तब हंस तू मेरी जान.
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM

0: What a classic. I do love this one. ये जो चिल मन है महबूब की मेहंदी से ये गाना आपने सुना और इससे पहले फिल्म शराबी से. आई डोंट नो व्हाई सुबह सुबह मैं शराबी के बारे में सोच रही थी लेकिन फिल्म शराबी से आपने सुना दे दे प्यार दे. प्यार तो आपने काफी दिया है लेकिन अभी मेरी बारी है. But before that,
1: currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currencies are trading at 129.42 Indian rupees, 374.8 Pakistani rupees and 445.45 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold this morning is trading at 103.19 pounds sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: महेंद्र कपूर क्लासिक विच आई हैव नॉट प्लेड इन अ लॉन्ग टाइम. हरियाली और रास्ते से ये गाना हम पेश करना जा रहे हैं आपके लिए. 7 बजे के बाद हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बॉलीवुड फ्लैशबैक. और ये भी बताइए हमें कि गणेश विसर्जन के लिए आप क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई विल सी यू आफ्टर

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta.

0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट ट्रेवल हब world.com.
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
3: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
5: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: थैंक यू फॉर 5 ग्लोरियस ईयर्स लाइका गोल्ड.

0: अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर, एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: पकने का गो नकने का गो रोको ना मुझे टोको ना मुझे
1: देखो ना मुझे छेड़ो ना मुझे मेरे संग मत करो जोड़ा जोड़ा
2: I love this makanakano nakamakamango what the saying I don't know

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है, स्वागत है संगीत प्रेमियों का और हंसी के ठहाकों के कदरदानों का, दिल वालों का, मस्तों का। माय नेम इज रवि शर्मा और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं पहुंच गया हूं स्टूडियो में। बहनों भाइयों, आप सब की ओर से शुक्रिया अदा कर देता हूं। काजल का शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। बुधवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 16 तारीख हो गई आज। वक्त सरकता जा रहा है, दिल धड़कता जा रहा है। ये वक्त नहीं गुजर रहा, जिंदगी गुजर रही है साहब। जन्मदिन मनाते लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है। याद रखिए, उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र घटती है। यानी जितनी लेके आए हैं उसमें से जो साल गुजर गए वो घट गए, कम रह गए। इसलिए एक एक लम्हा जीने का है, ढोने का नहीं है। ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम। खेले कूदे, हंसेंगे और हंसाएंगे, बस और कोई बात ना पूछेंगे हम। तैयार हो जाइए, शुरू होता है मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds. This is Leica Radio.
4: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
5: No!
4: Samba?
5: No!
4: Rumba?
5: No!
4: Samba?
5: No!
4: Tequila?
5: No!
4: Tango?
5: No!
4: Charleston?
5: No!
4: Polka?
5: No!
4: No?
5: No!

0: दिल तो दिल ही है भाई, अब वो फेफड़ा तो हो नहीं सकता। नहीं, दिल तो दिल है, अब आप कहे के भाई वो लीवर बन जाए, वो किडनी बन जाए, वो तो नहीं हो सकता। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आगाज कर चुके हैं मनोरंजन प्रोग्राम का। और बहनों भाइयों, ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो मिडलैंड्स के जो है कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक हंसी के ठहाके, कुछ चटपटे गीत, कुछ अटपटी बातें, ये सब जुटा करके भाई मैं हाजिर रहूँगा यहाँ स्टूडियो में और आप मेरा साथ निभाएंगे। राइट, मौसम खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन मुहूर्त है और ऐसे में आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं की ज़रूरत है कि आप साथ बने रहें। पहले आपको पाउंड का रेट बताएंगे और उसके बाद भाई सुनवाएंगे कुछ ये गीत 10:30 बजे का करीब। आज की जो ख़ास ख़ास खबरें हैं वो हम लेकर के आएंगे और 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाएंगे थॉट फॉर द डे यानी चिंतन। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई आपको आज का रेट। पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत तो इनकी सेवाओं का इस्तेमाल कीजिए। आज का रेट है फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.9 रुपीज, 128 रुपए और 90 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hey, Em, still up for that hike?
3: Yep, count me in.
2: Or we could check out that new brunch place.
3: Sounds good.
2: Or what about...
3: Let's do it.
4: When you feel your best, you're up for anything. With Boots trusted healthcare advice, services and treatments, you'll stay on top of your health, ready to take on whatever the day throws your way. And with buy one, get the second half price on healthcare, including cough and cold treatments, you can really afford to.
5: Give it some Boots.
4: Offer ends 3rd of November 2026. Mix and match across selected range. Cheapest item half price, subject to availability.
1: Like a gold is five.
6: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: माया भाईनी मौजमाणमा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। मायाबाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
8: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS।
7: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
8: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. London, get ready for an unforgettable night.
11: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
10: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
11: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
10: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
11: powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
10: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: We're finally going home for the wedding.
12: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
13: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
13: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
13: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
14: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
16: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
15: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
16: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
18: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208 951 0111.
19: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
21: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
22: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
24: ओ मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार.
0: 700 बार हंसना चाहिए लेकिन अब 1400 बार हंसाना चाहिए. कोशिश कर.

भूख नहीं लगती है। डॉक्टर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। कहता और बताओ, कहते नहीं रहने दो, बस मैं समझ गया। अब डॉक्टर ने भाई उसको 4 गोलियां दी और बिल थमा दिया, कहा ये लो टेबलेट्स, ठीक हो जाओगे। बस क्या करना, 2 गोली रात को सोने के बाद और 2 गोलियां सुबह उठने से पहले खा लेना। कैसी बीमारी है सर, पैसे देके गोलियां लेके चला गया, इसको कहते हैं गोली देना।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, मैं घड़ी की ओर देख रहा हूँ, समय हो चला है समाचारों का। और भाई, समाचारों में एक बात बड़ी चर्चित हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो दुनिया भर में फूट डालो राज करो के लिए प्रसिद्ध था, अब कहते हैं कि उसने कई देशों के टुकड़े कर दिए, भारत पाकिस्तान अलग कर दिए, इसी तरह से और भी साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या ईस्ट या और वेस्ट, भाई इस तरह से बांट दी, कहते हैं आज खुद वो बंटवारे के कगार पर जा पहुंचा है। ऐसी बात है। हाँ, चर्चा हो रही है कि ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के जो दूसरे भाई राज्य हैं, जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स कहते हैं, वो अलगाव की बातें कर रहे हैं। और एंडी बर्नहम जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर वो चाहेंगे तो हम उन्हें रेफरेंडम कराने का मौका दे सकते हैं। जनमत संग्रह एक बार पहले हुआ था, तो उस समय तो भाई लोगों ने बहुत मामूली मेजॉरिटी से ब्रिटेन में रहने का फैसला किया था, लेकिन अब अलगाव की बातें चल रही हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है आज के समाचारों में, तो आइए देखते हैं आज की ये खास खास खबरें सुनते हैं।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ईरान पर हमले की अमेरिका ने अब तक क्या कीमत चुकाई है, भाई एक रिपोर्ट आई है और उसे पता चलता है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक हवाई जहाज को मार गिराया है। भारत से आने वाली खबरों में, गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में अभियुक्त कल्याण बैंसला को हरियाणा की एक लोकल अदालत ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हिट एंड रन के भाई अपराधी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। वकील ललित बिंदल ने कहा कि अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। हमने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस के पास पहले ही पर्याप्त समय था, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वो मेन खबर, हूती विद्रोहियों का दावा, सऊदी अरब का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया है हमने। आज उन्होंने दावा किया कि एक सऊदी लड़ाकू हवाई जहाज को हमने गिराया है। उन्होंने ये भी कहा कि विमान को निशाना बनाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित घर में बनाए हथियार का इस्तेमाल किया गया है। हूती लड़ाकों के स्पोक्स पर्सन याया सरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यमनी हथियारबंद बलों ने मारीब प्रांत के हवाई इलाके में शत्रुतापूर्ण अभियान चला रहे, दुश्मनी निभा रहे एक सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू हवाई जहाज उन्होंने मार गिराया है, इसमें कामयाबी हासिल की है। याया सरी ने कहा कि लड़ाकू हवाई जहाज को स्वदेशी निर्मित यानी स्वयं अपने यहाँ बनाए हुए हवा से मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया है। भारत से आने वाली खबरों में, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक्टिंग चीफ को विदेश मंत्रालय में, फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया है। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नेवी की यूनिट के नामंजूर और गैर पेशेवर रवैयों को लेकर के कड़ा विरोध दर्ज कराया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस रवैये की वजह से इंडियन नेवी की एक यूनिट के साथ उसकी टक्कर हो गई, एक जहाज की। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कल मंगलवार की शाम को उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी का एक जहाज रेगुलर निगरानी पर मौजूद भारतीय नेवी के एक युद्धपोत यानी लड़ाकू जहाज, पानी के जहाज की ओर तेजी से आया और जिससे दोनों में टक्कर हो गई। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये घटना इंटरनेशनल इलाके में, पानी में जो इंटरनेशनल एरिया था उसमें हुई और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण, उसका बिहेवियर अप्रैल 1991 में फौजी अभ्यास, युद्ध अभ्यास यानी एक्सरसाइज और सैनिकों की आवाजाही के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 10 का सीधा उल्लंघन है, खिलाफ वर्जी थी। भारत से आने वाली अन्य खबरों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यूपीआई पर जीरो एमडीआर खत्म करने और शुल्क लगाने की अमेरिकी मांग मान ली है। पाकिस्तान से आने वाली खबरों में शहबाज शरीफ ने मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश को लेकर के उसकी कड़ी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं मक्का अल मुकर्रमा के पवित्र स्थल पर जो ये घृणित हमला हुआ, जघन्य ड्रोन हमले की जो कोशिश हुई है, इसकी कड़े अल्फाज में निंदा करता हूं। पाकिस्तान के लोग इस निंदनीय घटना से दुखी और चिंतित हैं। ये माफी के लायक नहीं है और इससे हमें बड़ा दुख हुआ है और इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है। भाई जो मक्का समझौता हुआ था उसके अनुसार तो लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो कड़ी निंदा से काम चलाया जा रहा है। भाई उन्होंने लिखा कि हम रॉयल सऊदी हथियारबंद बलों की जो सतर्कता है, साहस है, जो पेशेवर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको सलाम करते हैं जिन्होंने तेजी और बहादुरी के साथ कार्रवाई की। मैं एक बार फिर सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और भविष्य में तनाव बढ़ने की स्थिति से पीछे हटने की जो है वो मांग करता हूं, आह्वान करता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा इलाका पहले ही संघर्ष के कारण बहुत पीड़ित हो चुका है, बहुत नुकसान उठा चुका है। संवाद यानी बातचीत और डिप्लोमेसी ही शांति की दिशा में एकमात्र परमानेंट रास्ता है। भारत से आने वाली खबरों में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार का यूपीआई लेन देन पर टैक्स लगाना लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने लिखा कि कीमतें बढ़ने से डिजिटल और कैशलेस भारत का सपना बिखर जाएगा और लोगों की पॉकेट पर बोझ बढ़ेगा। फुटबॉल से जुड़ी एक खबर, अर्जेंटीना ने अक्टूबर में बेनिन के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अपनी टीम में फॉर्मर कैप्टन और स्टार फुटबॉलर रहे लियोनेल मेसी को शामिल किया है। भाई मेसी तो रिटायरमेंट ले चुके थे पर कहते हैं नहीं, इस मैच में खेलेंगे, ये एक फ्रेंडली मैच होगा और अर्जेंटीना अपने फॉरवर्ड खिलाड़ी मेसी को इस मैच से इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई देगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 सितंबर को यानी आज और कल भूटान के दौरे पर जाएंगे। वो विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री HA लोनपो DN ढुंगेल के इनविटेशन पर भूटान की सरकारी यात्रा कर रहे हैं। वो भूटान के राजा और वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान जा रहे हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उसने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागे गए एक ड्रोन हमले को मक्का के प्रतिबंधित हवाई इलाके से पहले ही नाकाम कर दिया है। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों पर हूती हथियारबंद गुटों के हमलों में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कार्रवाई की है। मक्का में उन्होंने पहली बार जुलाई 2017 में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इसी बीच कल मंगलवार को मक्का, जेदा और तैफ में थोड़े वक्त के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था और सऊदी सिविल डिफेंस अफसरों ने बाद में घोषणा की कि खतरा टल गया है। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तस्वीरें खास तौर पर CBS समाचार नेटवर्क को ही उपलब्ध कराई गई हैं और इन तस्वीरों में अमेरिकी बोइंग A3 सेंट्री हवाई जहाज को जो हमले में हुआ नुकसान है वो साफ देखा जा सकता है। हवाई जहाज का टूटे हुए हिस्से जो है वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। तस्वीर में मौजूद अमेरिकी फौजी कर्मियों ने CBS को शर्त पर भेजी थी ये तस्वीरें कि पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन अब वो पब्लिक हो गई हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शिपिंग सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि लाल सागर पर बने सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर तेल की लैंडिंग रोक दी गई है और इन खबरों के बाद कल मंगलवार को तेल की कीमतों में लगभग $3 प्रति बैरल समाचार भाई समाप्त करने पड़ रहे हैं क्योंकि समय की अवधि समाप्त होगी, लेकिन जाते जाते आपको आखिरी खबर ये भी बता दें कि T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत लिया है। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। समाचार अब समाप्त होते हैं।
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: अब लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए म्यूजिक। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं गोल्डन गीतों का प्रोग्राम मनोरंजन।

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Tumne kisi se kabhi pyar kiya hai? Bolo na.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये कार्यक्रम आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं, दैट्स माय नेम, और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, और बहनों भाइयों ये समय है चिंतन का, विचार करने का। मैं सुनवाता हूँ आपको थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई आज के विचार में हमें आलेख मिला है भारत में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक शहर इंदौर से श्रीमती पुष्पा जैन का भेजा आलेख। माननीय मिसेस जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भारत के हृदय में और उस सांस्कृतिक नगर में हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। कल के लिए था आपका चिंतन, पर हम आज शामिल कर रहे हैं, कल पर्युषण का पर्व था और जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार, पर आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी और ये संदेश। आपने इशारा किया है कि एक गीत आपने कुछ दिन पहले बजाया था मन्ना डे की आवाज में, उपकार फिल्म से, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस गीत के बारे में पिक्चराइज्ड प्राण साहब ने मनोज कुमार को एक बच्चे के रूप में जब रोल कर रहा था कोई बालक उनका, उसे समझाते हुए कहा था, जब उसने पूछा कि बाबा आप दिन में तो कहते हैं सबसे प्यार करो अच्छे काम करो, और शाम को कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो प्राण ने हंसकर कहा था, दिन में वो कहता हूं जो होना चाहिए, शाम को उस कड़वी सच्चाई को बखान करता हूं जो हो रहा है, जो होना चाहिए और जो हो रहा है, दोनों में बड़ा फर्क है इस कलयुग के दौर में। इस संदर्भ में एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना आपने लिख के भेजी है, और बहनों भाइयों ये सचमुच है, सच्ची घटना है, क्योंकि हमने जांच की, सत्य बात है। ये मुंबई के घाटकोपर इलाके की है, वहां घाटकोपर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वहां एमएलए कहा जाता है, जैसे केंद्र में दिल्ली में पार्लियामेंट के मेंबर को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो एमएलए राज्य में जो असेंबली होती है उसके मेंबर को एमएलए कहते हैं, विधायक। और ये घटना अभी इसी महीने चर्चा में आई है, पराग शाह ये वो एमएलए हैं जिनके बारे में ये चर्चा है, करोड़पति हैं, लेकिन एक दिन के लिए वो भिखारी बने, बिल्कुल भिखारियों जैसा भेस, फटे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा ऐसा कि कोई ना पहचान सके, मगर क्यों ऐसा किया उन्होंने? वेल, आपको बता दें, पराग शाह विधानसभा चुनावों के हल्फनामे में जहां अपनी संपत्ति बतानी होती है ना इलेक्शन लड़ने से पहले, उन्होंने अपनी संपत्ति बताई 3,383 करोड़, इससे भी ज्यादा उनकी संपत्ति आज है, क्योंकि वो रियल इस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, और विधायक बनने से पहले वो बीएमसी के पार्षद भी रह चुके हैं। अब जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान उनके गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें सलाह दी कि भाई वो बहुत ठाट बाट से रहते हैं, वो अपना वैभव, अपनी सिक्योरिटी, अपना आराम छोड़कर एक दिन सामान्य भिक्षुक का जीवन जीकर देखें, पता लगे दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो एक दिन एक भिक्षुक का जीवन जिए। भाई शाह ने गुरुजी की बात मान ली और अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया, गंदे कपड़े, बढ़े हुए बाल, दाढ़ी और सामान्य एकदम भिखारी जैसा रूप बनाकर बंबई की सड़कों पर निकल पड़े, मुंबई की सड़कों पर। यह सच घटना है, फिर बता दूं, अधिकांश लोगों ने पहचान ही नहीं पाए, वो लोगों से भीख मांग रहे थे, तो साहब लोगों ने किस तरह दुत्कारा उन्हें। एक होटल के सामने गए तो उसने कहा कि हमारे सामने बैठो, बुरा असर पड़ता है क्लाइंट्स पर,
बड़ा होटल था। वो अपनी कंपनी के बाहर गए तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। hey, आगे चलो, यहां मत बैठो, यहां मत रुको। आगे बढ़ गए। बड़ा कटु अनुभव वो बटोर रहे थे आज। एक मामूली हलवाई की दुकान के बाहर गए, भीख मांगी तो वो समोसे तल रहा था, उसने एक समोसा दे दिया दया करके। लेकिन लोग किस तरह उनकी तरफ देख रहे थे, क्या बर्ताव कर रहे थे, वो सब सहते जा रहे थे और एक अनुभव जमा कर रहे थे। उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में यानी नॉर्मल हालात में उनसे मिलने के लिए लोग कतार में खड़े होते थे, लाइन लगती थी, एमएलए थे। लेकिन जब वो खुद लोगों के बीच एक मामूली भिखारी बनकर पहुंचे तो व्यवहार अलग था। उनके अनुसार इससे उन्हें सामाजिक हैसियत और असल जिंदगी के फर्क को समझने का मौका मिल रहा था। अब इसका जैन दर्शन से क्या संबंध है, सुनिए इस प्रयोग को। त्याग, अपरिग्रह और आत्मचिंतन की जैन परंपरा से जोड़ा गया है। केवल भिखारी का वेश धारण करना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए सुविधाओं से और प्रतिष्ठा से बाहर निकलकर दूसरे आम व्यक्तियों के जीवन को जीना महसूस करना था। और साहब, सच्चाई सामने आ गई, कलयुग का असली रूप सामने प्रकट हो गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की जायदाद है, जिसके पास बहुत बड़ा पद है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, लोग जिससे मिलने का इंतजार करते हैं, वही एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पर निकला तो किस तरह से दुत्कारा गया। फिर बता दूं, ये कहानी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पराग शाह से जुड़ी है और उन्होंने जैन मुनि नम्र मुनि महाराज की प्रेरणा से एक दिन के लिए भिखारी का यह जीवन अनुभव किया। बहनों भाइयों, हजारों यार होते हैं जब जर पास होता है, धन पास होता है, प्रतिष्ठा पास होती है, मगर टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दिन में हम वो कहते हैं, चिंतन में हम वो कहते हैं जो होना चाहिए, पर कभी कभी वही महसूस वो भी करते हैं जो हो रहा है। ये कलयुग है। सिर्फ प्रभु पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हमारा अपना कोई है ना सबसे नजदीक रिश्तेदार, तो वो ईश्वर है, वही हो सकता है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। भाई हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं, कहती आंखें खोलने वाला था चिंतन आपका। चिंतन कहते हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई बता करके आप हमें जागरूक भी बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मधु, आपका संदेश है। सुनीता जी, महेंद्र पटेल, रागनी, जगदीश, हेना, विजय, फतेह पटेल, अनिल सोनी वियाना में, रानी सलाव में, और नीला चौधरी जी हमारी रेगुलर लिसनर, आप सबके संदेश मिल रहे हैं। उल्लास टोरंटो में, पमी सलाव में, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, भरत गंगाराम, देशराज बैसन साहब, हंसा वोरा, हेटल सोलंकी, जस्सू, मीनाल त्रिवेदी, और भाई आप सब ने चिंतन के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे मैं पास ऑन कर दूंगा श्रीमती पुष्पा जैन जी को, इंदौर भारत से, मध्य प्रदेश में है इंदौर शहर, बहुत ही कल्चरल सिटी। भाई वहाँ से श्रीमती पुष्पा जैन ने आज के चिंतन के लिए आलेख भिजवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गीत आपने सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म गोपी, रफी साहब की आवाज़ थी। आज का चिंतन, आज का विचार भाई जैन मुनि जी द्वारा प्रेरित और एक एमएलए के जीवन से जुड़ा था मुंबई के, तो हमारे श्रोताओं को पसंद आया, ये जानकर अच्छा लगा। याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. एक पाउंड के बदले आज 128.90 रुपए दे रहे हैं। नोट कर लीजिए आज का रेट 128.9 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड। एंड भाई यू कैन ट्रांसफर मनी वाया ब्रांच, किसी भी SBI UK की ब्रांच में जाकर, ऑनलाइन या फिर थ्रू योनो SBI UK मोबाइल ऐप आप पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है.
8: Diwali story, the journey of Ram and Sita.
7: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, Zee TV, an exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.

0: love you.
1: I love you too. I love you three. दोनों झूठ बोल रहे थे भाई। बैक टू बैक संगीत हमने आपको सुनवाया। आज झूठ सच सब मिल करके एंटरटेनमेंट बन जाता है, राइट? दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क। आप सुन रहे हैं रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम। और इसी बीच वही हमारे पास कुछ और संदेश आकर के चिपक गए हैं हमारे स्क्रीन पर, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन एक अरुणा जी आपका मैसेज मिला है। अरुणा जी, हाँ अरुणा जी, और कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम द थॉट ऑफ द डे। यह वो हर रोज़ होता है, हर चिंतन कुछ न कुछ हमें सबक सिखाता है। हाँ, और निर्मला जी आपका मैसेज मिला। आज आपके घर में किसका जन्मदिन है? शी सेज दैट माई ग्रैंड डॉटर सोनम इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे बट एट द मोमेंट शी इज़ इन स्कूल। तो फिर स्कूल में जाके मनाइए भाई बर्थडे तो उन तक हम मेरा आशीर्वाद, मेरा पैगाम पहुँचाइएगा। सोनम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके नाना नानी, आपके भाई जोरावर और करण की ओर से, और हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क परिवार की ओर से भी। और एक और संदेश हमारे स्क्रीन पर आया है। ये है संदेश मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से। और भाई लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। जब आप खुद बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती है, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर डिपेंड करते हैं। इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैंस लेकर आए हैं कि अप टाइम प्रॉमिस आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, अच्छा ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब एक ही जगह। तो मर्सिडीज बेंज वैंस आपके साथ हैं। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। टर्म्स एंड कंडीशंस लागू।

0: सचमुच दे देगी जान भाई, कोई भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि ये पहले भी कई बार जान दे चुकी है। बता, आजकल जान तो लोग देते लेते रहते हैं, ऐसी कॉमन चीज बन गई है। वेल, आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्रिकेट। तो भाई, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच इस सीरीज का तीसरा T20 मैच है, वो कल खेला जाएगा दिल्ली में, और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे। वैसे सीरीज भारत के पक्ष में जा चुकी है, क्योंकि वो 2-0 से इसमें लीड कर रहे हैं, और जियो स्टार पर आप इसे देख सकते हैं। फील गुड ट्रैक
1: brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a Gold. Like a Extra podcast update.
0: याद दिला दूं आपको, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का नंबर 33 इज अवेलेबल बाय यू कैन वॉच। इसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स, कर्जे, होस्टेड बाय खुश। और भाई, आप बहुत खुश होंगे खुश के इस एपिसोड को देख करके, क्योंकि खुश स्पीकिंग टू मीनल सांबरे, फाउंडर ऑफ सामरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स। दे एक्सप्लोर व्हाई बिजनेसेस शुड प्लान फंडिंग बिफोर कैश फ्लो बिकम्स ए प्रॉब्लम। कैश फ्लो में प्रॉब्लम आने से पहले भाई उसकी कैसे व्यवस्था की जानी। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com.
6: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio. Your partner, Leica Radio Network.
8: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु,
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
12: टू बुक कॉल 0208514 5400, book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
14: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
15: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
14: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
15: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
14: ICICI Bank UK, transfer now, celebrate together.
16: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLC's apply.
17: We're finally going home for the wedding.
18: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
19: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
18: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
19: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
18: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
19: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Power powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps, and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
21: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

0: सना से लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो
1: दिस इज सैंडी शॉ ड्राइव यू होम एवरी मंडे।

0: रंग बरसे भीगे चुनर वाली, यानी बगैर चुनरी वाली जो वो सूखी रह गई क्या? सिर्फ चुनरी वाली भीगी है, छतरी वाली भी भीगी है। ये भाई कंप्यूटर को नहीं पता था कि आज होली नहीं है, ये तो भाई किसी भी त्यौहार का गीत किसी भी समय लगा सकता है। लेकिन हाँ, जब रंग बरसेंगे तो भाई होली जैसा माहौल ज़रूर हो जाएगा, और रंग बरसेंगे तो जीवन में भी एक रंगीन अनुभूति होगी। राइट, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवाए, और मुझे यकीन है कि भाई पहला गीत तो प्रेरणा था, हमारे चिंतन का एक हिस्सा बन सकता था, पहले बना है जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, देखना एक दिन पृथ्वी गोल है वापस घर पहुंच जाओगे, धरती गोल है भाई तो चलते चलो सुबह शाम एक न एक दिन वापस घर आ जाओगे। और दूसरा गीत अभी आपने सुना, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सिलसिला। और बहनों भाइयों, ये कार्यक्रम का तीसरा घंटा शुरू हो चुका है बैक टू बैक संगीत से। अब एक बार फिर से आपको रेट्स बता दें, अगर आप SBI UK के थ्रू पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत, तो आज का रेट
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India, UK, reminding that there are attractive rates at the moment if you want to send money to India. £1 could get you 128.9 rupees, 128 rupai aur 90 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch, online or by using the YONO SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India, UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a gold is 5.
2: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
8: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
7: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
11: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
12: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
13: I left behind everything I knew.
12: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
13: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
12: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
14: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Artist of the Week is Shashi Kapoor. कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर ने भूमिकाएं निभाई और नाम होता था उनका रवि।

0: में सना हम गम तेरे और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: सुन लिया आपने शशि कपूर साहब की फिल्म हसीना बन जाएगी का गीत हमने आपको सुनवाया भाई। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक और बहुत सारे गाने उनकी फिल्मों के आपको सुनने को मिलेंगे इस हफ्ते। अब साहब आज क्योंकि बुधवार है और बुधवार के दिन कुछ ऐसा सुनवाने का हमारा इकरार है।
4: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: पर कैसे हंसे साहब, इतना गंभीर माहौल, हॉस्पिटल में बेड पर पत्नी उनकी लेटी हुई है, डॉक्टर खड़ा है, सीरियसली कह रहा है देखिए साहब आपकी बीवी के बारे में दो खबरें हैं, एक बैड न्यूज है एक गुड न्यूज है, बोलिए पहले कौन सी बताऊं? खैर साहब बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। उसने कहा तो देखो पहली खबर तो ये है कि आज के बाद तुम्हारी बीवी कभी नहीं बोल पाएंगी। कहता है ठीक है, अब बैड न्यूज भी बता दीजिए। मतलब ये गुड न्यूज थी, पत्नी सुन रही है, घर चल तू। भाई जबान नहीं चलेगी, हाथ तो चलेंगे, डंडा तो चलेगा,

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई आपको कुछ एक सूचनाएं और साझा करें आपके साथ। एक तो भाई आप सुन चुके हैं, फिर याद दिला रहे हैं कि सुनील ग्रोवर, नॉट सुनील गावस्कर, सुनील ग्रोवर बहुत बड़ा नाम है भाई। आजकल हास्य के क्षेत्र में हंसा हंसा के पेट दुखाते हैं डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, और ज़्यादा मशहूर हो गए और यहाँ आकर और मशहूर होंगे भाई। ये हरियाणा का कलाकार है और कपिल शर्मा इस शो में छाया हुआ है, तो वो लाइव परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th of October and Leicester at Mattioli Arena on Saturday 31st of October. Tickets at AXS, Eventbrite and Ticketmaster. Exclusive radio partner, of course, Laika Radio Network. और भाई एक और ये कि Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raga Sun. डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम। और इसके अलावा भाई एक और सूचना, और वो ये है कि कौन सी है, जियो हॉटस्टार के बारे में। जियो हॉटस्टार, बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान। द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार देखना ना भूलें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। तो साहब जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी, ये भी याद रखिए और इसके कार्यक्रमों का आनंद लुत्फ उठाइए। आज 16 सितंबर को कौन अपना जन्मदिन मना रहा है भाई? फिल्मी सितारों के बारे में तो बाली भाई जो है वो अब क्या कहते हैं जानकारी लेकर आएंगे ही, लेकिन जिनके बारे में वो नहीं बताएंगे हम बताएंगे। एक तो आज पी चिदंबरम, ये नाम सुना आपने? किसी समय भारत के वित्त मंत्री रहे और कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व हैं आज भी। चिदंबरम साहब जो है होम मिनिस्टर भी रहे, तो आज उनका जन्मदिन है। 1945 में जन्मे थे 16 सितंबर को पी चिदंबरम। इसके अलावा एक और नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम है। वैसे तो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी आज पड़ता है, सिरसा में जन्मे थे, भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक समय थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही चर्चित नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये। 1914 में जन्मे थे आज के दिन सिरसा में हरियाणा में। और साहब प्रसून जोशी उत्तराखंड में जन्मे थे, ये भी एक बहुत बड़े गीतकार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटर, मतलब काफ़ी काम ये लेखन की उसमें क्षेत्र में करते हैं, तो उनका भी जन्मदिन आज है। ये 1971 में जन्मे थे। गौरी प्रधान पुणे में जन्मी थी, ये भी एक एक्ट्रेस हैं और एक भाई संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। आपको बताऊँ, आपको सुन करके शायद हैरानी नहीं होगी क्योंकि उनके नाम पर बहुत सारे अवार्ड हैं और बहुत सारी प्रतिष्ठा जुड़ी है। नाम है उनका M.S. सुबुलक्ष्मी, सुना कभी? M.S. सुबुलक्ष्मी गायिका रही हैं, भारत की बड़ी जानी मानी, साउथ की है, कर्नाटक से, लेकिन साहब जन्म इनका मदुरई में हुआ था और इन्होंने संगीत को कहां से कहां पहुंचाया। ऐसी गायिका शास्त्रीय संगीत के लिए तो प्रतिष्ठित थी ही, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले भारत सरकार की ओर से। सबसे बड़ा पुरस्कार भी इनके नाम है, भारत रत्न वाला। और इसके अलावा इन्होंने पहली बार भारतीय संगीत को इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित किया, जबकि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में इनका गीत गवाया गया। M.S. सुबुलक्ष्मी भाई आज दुनिया में होती तो सोच लीजिए कौन सा जन्मदिन, 90वां जन्मदिन मना रही होती, नहीं 110वां जन्मदिन मना रही होती, क्योंकि 1916 में जन्मी थी और आज 2026 में उनका 110वां जन्मदिन होता। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: ये है लाइका गोल्ड
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Mics are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथऑल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई। साउथऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। नाउ कॉन्टैक्ट साउथऑल ट्रेवल टुडे ऑन 02085748410। दुबई की यात्रा के लिए एक ही नाम, साउथऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: हॉलीडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथऑल ट्रेवल। लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस। विजिट southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio Network.
10: Cow's choice, cow's choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-333.

0: brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: आपने जो गाना अभी सुना, म्यूजिक था नौशाद जी का, लेकिन हम आज नौशाद जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं खुमार बाराबंकी. बाराबंकी उनका नाम इसलिए क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन बाराबंक इन उत्तर प्रदेश. 15th of September 1919 से लेकर 19th February 1909 तक. एंड उन्होंने खुमार इसलिए रखा क्योंकि देर इज एन अरेबिक रूट कॉल्ड खुम विच मीन्स अ जार ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब के वाइन यू नो. एंड इनके गाने सुनकर खुमार आ जाता है, इसलिए खुमार बाराबंकी. द उर्दू पोएट, हिंदी फिल्मी लिरिसिस्ट, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से. अब बाराबंकी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक पोएटिक एनवायरनमेंट था इन हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. इनके पिताजी थे डॉक्टर गुलाम हैदर एंड ही रोट सलाम्स एंड मर्सियाज अंडर पेन नेम बाहर. उनका पेन नेम था बाहर. वो थे पिताजी कुमार खुमार बाराबंकी के पिताजी डॉक्टर गुलाम हैदर. एंड इनके अंकल करार बाराबंकी वॉज अ वेल नोन पोएट एंड हु गाइडेड कुमार इन हिज यंग एज एंड डिड इस्लाह दैट इज करेक्शंस टू हिज पोएट्री. एंड हिज ब्रदर काजिम हैदर निगर हु डाइड इन हिज अर्ली एज वॉज ऑल्सो अ पोएट यू नो. एंड कुमार कंप्लीटेड हिज हाई स्कूल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड देन मूव टू लखनऊ for his intermediate classes, where a romantic turn in his life made him quit education and start writing poetry of love. अब मैं इतना ही बताऊंगा कि वो जो मुशायरा करते थे, इनकी बड़ी melodious आवाज थी, तो उसमें से बड़े famous हो गए. क्योंकि अगर कोई poetry करे और सुर भी लगाएं, तो क्या बात है. मैंने कितने सारे poets देखे हैं जिनकी शायरी इतनी खूबसूरत होती है लेकिन इतने बेसुरे होते हैं, लेकिन तो भी कभी कभी काम कर जाती है. इनका तो दोनों का कॉम्बिनेशन था, अ ब्यूटीफुल कॉम्बो बाय विच जिगर मुरादाबादी द फेमस पोएट ही रिमेंड इन एसोसिएशन विद हिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड गजल्स एंड वॉइस मेड हिम अ फेवरेट इन मुशायराज लाइक आई सेड. एंड एक गारंटीड सक्सेस हुआ करता था मुशायरा में जब उनका नाम अनाउंस होता था. एंड ही हैड रिटन सम फेमस सॉन्ग्स इन हिंदी फिल्म्स जैसे शाहजहां, दैट्स 1946. आई डोंट वांट टू टेक यू दैट फार बैक. लेकिन बारादरी का गाना मैंने अभी सुनाया आपको, 1955 की फिल्म. एक दूसरी फिल्म है साज और आवाज़, उसका मैं गीत आपको सुनाऊँगा. और अगर वक्त मिला तो एक KL साइगल वाला गाना मैं आपको सुना दूंगा, जस्ट टू बी अ लिटिल बिट नॉस्टैल्जिक टुडे. बट आई डोंट वांट यू टू फील टू मच लाइक ये सैंडी शाह का शो है, क्योंकि 4 बजे वो आ रहे हैं ना, इसलिए उनका शो अभी से फील नहीं कराना चाहता हूं मैं. सो वी आर रिमेम्बरिंग खुमार बाराबंकी.
2: ये है लाइका गोल्ड. Up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com. Thank you.

0: मैं भी कहूं वाह वाह राम लक्ष्मण जी। जी हां, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड द नेम राम लक्ष्मण। सुरेंद्र कदम और विजय पाटिल दोनों की पार्टनरशिप शुरुआत हुई। थोड़ी देर में आपको मैं उनकी कहानी बताऊंगा, पर जब दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई तो उन लोगों ने नाम रखा राम लक्ष्मण। अभी राम लक्ष्मण में सुरेंद्र कदम और विजय पाटिल। सुरेंद्र कदम डाइड इन 1976 जस्ट आफ्टर वन फिल्म विच वॉज अ मराठी फिल्म पांडू हवालदार, और बहुत हिट रही वो फिल्म। और दूसरी फिल्म साइन करते ही एजेंट विनोद, हिंदी फिल्म जो थी। सुरेंद्र कदम, दैट इज द राम पार्ट ऑफ राम लक्ष्मण, ही पास्ड अवे इन 1976। विजय पाटिल कंटिन्यूड विद द नेम राम लक्ष्मण अंटिल ही डाइड। वाओ, गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट। नाउ देयर फर्स्ट फिल्म टुगेदर वाज अ मराठी फिल्म, फिल्म मेकर दादा कोंडके। इन्होंने उनको देखा, विजय पाटिल को। तब विजय पाटिल हैड स्टार्टेड इनिशियली एज अ सिंगर एंड ही स्टार्टेड हिज ओन ऑर्केस्ट्रा नेम्ड अमर विजय। अमर उनका बेटा, तो अमर विजय के नाम से उनका ऑर्केस्ट्रा चलता था। एंड द ऑर्केस्ट्रा गॉट द अटेंशन ऑफ द कॉमेडियन एंड फिल्म मेकर दादा कोंडके, और उन्होंने विजय को ऑफर की एक फिल्म। और विजय ने कहा, मेरा दोस्त है सुरेंद्र, हम दोनों पार्टनरशिप में ये करेंगे। और पांडू हवालदार 1975 की फिल्म में, मराठी फिल्म में उनको संगीत दिया गया एंड उनका नाम रखा गया राम लक्ष्मण। दैट वॉज बाय दादा कोंडके। जैसे मैंने कहा, सुरेंद्र द राम पार्ट, ही डाइड इन 1976 एंड विजय, दैट इज लक्ष्मण, कैरीड ऑन एज राम लक्ष्मण। फिर फिल्म एजेंट विनोद जो उन्होंने साइन की थी वो उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद तो फिल्मों के बाद फिल्म। मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट दिस ग्रेट मैन विजय पाटिल, जिन्होंने राम लक्ष्मण के नाम पे म्यूजिक किया, डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक कंपोजर्स, राम लक्ष्मण का जो म्यूजिक था, इट हैड अ क्वालिटी दैट मेड इट स्टैंड आउट। ये जो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सब गानों में आप म्यूजिकल जो ट्रीटमेंट है और मेलोडी है, आप सुनिएगा, ऐसी मेलोडीज के किसी भी सिंगर को ले लो, ये गाना हिट होगा ही होगा। तो इन्होंने जब सिंगर्स जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को, हरिहरन जी को, इन सब से गवाया, अमित कुमार को भी गवाया, लता मंगेशकर वॉज वेरी वेरी, यू कैन से वेरी मच कॉमन इन एवरी सॉन्ग ऑफ हिज, वेयर एवर देयर इज अ लेडी सिंगर। और कुछ गाने ऑफ कोर्स, 100 डेज एक फिल्म थी जिसमें आशा भोसले जी को भी गवाया था इन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनकी जो म्यूजिक थी, हिज एबिलिटी टू ब्लेंड क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस विद कंटेम्पररी साउंड्स मेड हिज म्यूजिक बोथ एक्सेसिबल एंड सोफिस्टिकेटेड। ही वाज अ कंपोजर हु कुड मेक यू हम अलोंग, टैप योर फीट एंड एट टाइम्स ब्रिंग अ टीयर टू योर आई विद द शीयर ब्यूटी ऑफ हिज कंपोजिशंस। सच में इतना दिल से बोल रहा हूँ, जब भी गाने सुनता हूँ मैं कहता हूँ, इनको इतना तवज्जो क्यों नहीं दी गई थी, इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई थी। अगर इनको कुछ बढ़ावा मिलता तो इन्होंने इंडस्ट्री में सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को पीछे रख देना था, पीछे छोड़ देना था। इन्होंने कैसी कैसी फिल्में की, मैंने प्यार किया, जहाँ पे अवार्ड भी मिला था, आई मीन सो मैनी अवार्ड्स, 13 नॉमिनेशंस में से 7 अवार्ड्स मिले थे मैंने फिल्म को, एंड हम आपके हैं कौन को, दिस इज द फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ही गॉट अ नॉमिनेशन एक्चुअली फॉर दैट। एंड देन पुलिस पब्लिक, फिर फिल्में हैं एजेंट विनोद, हम साथ साथ हैं, सांच को आंच नहीं, हमसे बढ़कर कौन, उस्तादी उस्ताद से सुन सजना दर्दे दिल, हमसे है जमान, आई कुड गो ऑन एंड ऑन. लेकिन ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1975 टू 2021 फॉर 46 years. Almost 75 films in Hindi, Marathi and Bhojpuri. 75 films. Unme se I know a handful of about 35 of them, which were the Hindi films. So we are paying homage to Vijay Patil, who was born on 16 September 1942 in Nagpur, and he died at the age of 78 on 22nd May 2021 in Nagpur. It is his 84th birth anniversary. Main hoon Bali Brahmbhatt, aapki khidmat mein, on Leica Gold with Gold Afternoons, which is sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: 0730-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208 951 0111.
12: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
13: I left behind everything I knew.
12: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
13: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
12: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
14: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. 3 days to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Bye.
1: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
2: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Big Boss में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तुम्हें जान।
4: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House, exclusively on Jio Hotstar.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
6: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

Our artist of the week, that is Shashi Kapoor. कितना प्यारा गाना, सत्यम शिवम सुंदरम, मुकेश जी ने गाया फॉर ऑफ कोर्स हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शशि कपूर, जिसमें जीनत अमान थी, एंड म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी. होप यू एंजॉयड इट. अब मेरे पास एक खुशखबरी है आपके लिए. द 20th season of Big Boss is back, hosted by Salman Khan. The show airs every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar, and for the first time Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. And what I have got to say again,

0: प्राइस एट ऑल प्रोटेक्टेड। विजिट travelhubworld.com।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
4: Cow's Choice Pure Ghee. Har chamach mein shuddh desi swaad.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
16: Four beers, please, garçon!
15: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
18: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्लासिक फिल्म 1965 की शहीद फिल्म, उसमें संगीत और लिरिक्स दोनों प्रेम धवन जी ने किए थे। What a beautiful composition, what lovely music, what lovely lyrics. A song that is an evergreen song on Like a Gold.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.346. Indian rupees 129.15, Afghan Afghanis 87.41, Pakistani rupees 373.33, Kenyan shillings 174.33, and Mauritian rupees 63.59.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.69 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. It's queuing on the A312, the partway southbound, before you get to the M4 Junction 3. The speed sensor is giving a travel time there in about 10 minutes. Slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then Northolt Station. Queuing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner, and queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hanger Lane Directory. There's congestion on the A316 Chertsey Road westbound as you head from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. Finally to the Tube, and severe delays on the Victoria line this afternoon. That's due to emergency services dealing with an earlier incident. That's your latest traffic and travel.
4: The movie is starting. Turn off your phones.
5: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
6: Destinies? What destinies?
5: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
4: Alexander, phone off.
5: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
7: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
8: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
9: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert.
10: Bali Brambert.
9: Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
11: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7pm on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11, 11.
2: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
15: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
2: Celebrate Ganesh Chaturthi with Shiv Shakti Ganesh Mandal UK. Join us on Saturday the 19th and Sunday 20th of September at Richard Challoner Secondary School in New Malden. Enjoy Ganesh Puja, live bhajan jamming, mantra chanting, aarti, prasad and Ganesh Visarjan. Entry is completely free, so bring your family and join the celebrations. Special guest Bali Brahmbhatt. For more details, contact Kanchan Sharma on 07-429-683-913. Radio partner Like a Gold.
16: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
17: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
16: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
17: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
18: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज?
2: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
19: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
2: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
19: At all protected.
20: संगीत साधना है.
21: साधना है.
20: संगीत आत्मा की आवाज है.
22: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं.
20: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए,
23: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
24: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से, शनिवार और रविवार 7:30 बजे यूके, आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर.
2: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर. फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलस एंड मोर. एंड दिस अक्टूबर हाफ टर्म वी've गॉट आवर लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर. कॉल 02037736333 और विजिट mantraholidays.co.uk.
25: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
26: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
25: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
26: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
25: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
26: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
27: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

एंड आई एंड विद द म्यूजिक ऑफ राम लक्ष्मण इन हमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा गणपति देवा। एंड इट्स गोना बी सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम हियर एंड राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार, जय गणेश। मोहम्मद रफी साहब, भूपिंदर सिंह, शैलेंद्र सिंह, सपन चक्रवर्ती, आशा भोसले, सबने गाया इसमें। कल तक के लिए इजाजत।

0: Leica Gold. This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
2: Now, banking with ICICI Bank UK.

0: Sandy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound's getting 129 Indian rupees, 87.11 Afghan Afghani, 372.86 Pakistani rupees, 165.44 Bangladeshi Taka and 442.5 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £104.01 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: Anisa Nasser.
3: Sandy Shah.
1: Kya haale tera?
3: Alhamdulillah.
1: How was your day today?
3: Day was good.
1: Moja, ki kitta?
3: Aaj main apni house help khud hi bani hui thi. Aur ab mera ang ang dukh raha
1: hai. Such a gaana gaana lagi hai. Ang ang.
3: Insaan jazbaati jab ho jata hai na, to phir wo apni age ka khayal nahi karta.
1: When you say ki ang ang dukh raha hai, kyunki kuch karna pe ki manje to nikli si baar.
3: Matlab?
1: काम की कितना जो तना दुखनी पड़ी है
3: पता क्या किया मैं बताती हूँ जल्दी से क्विकली फी हैव टाइम अब क्या होता है कि इतनी सारी जिंदगी में चेंजेस आती हैं डाउनसाइज हम करते हैं बच्चे अपने घरों के हो जाते हैं चीजें जो बेशुमार होती हैं बेपनाह होती हैं फजूल में वो पड़ी रहती हैं रखी रहती हैं जबकि वही चीजें किसी के इस्तेमाल में आ सकती हैं तो आज मैंने किचन में से वो थोड़ा बहुत सामान निकाला
1: सो आपने वो किया जिसको कहते हैं डी क्लटरिंग समान जो इस्तेमाल नहीं होना
3: गोरा वो
1: डिक्लटरिंग सोच के गल कर
3: यस यस वही
1: हुण समझ आइए हुण पल्ले पाइए थैंक यू
3: ते पहले मैं फारसी बोल रही थी
1: थोड़ी जी कार की सफाई करके तू थक गई है चलो कोई गल चलो आगे मूव होने कोई जो कहना सी तू कहते मैं समझ गया ये या वो
3: हाँ जी बोलो
1: तेरा मुझसे है पहले से नाता कोई या ओ मेरी शर्मीली मेरा वोट जाता है शर्मीली को
3: Okay, and?
1: Aapka bhi.
3: And?
1: The next song has won.
3: Next song.
1: Thank you to all. Anisa, the wonderful Matakyu, yeah, thodi safai kiti is next. Don't forget Gold Nights. If you enjoyed even a single song on Drive, please join me tomorrow. Have a lovely evening and be nice to Anisa.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: सुनोगे सुनोगे दास्ताने गम, लिखूं मैं सुनोगे दास्ताने गम, लिखूं मैं तुम्हें तुम्हें तुम खुद को मैं या हम लिखूं मैं, सुनोगे दास्ताने गम, लिखूं मैं तुम्हें तुम खुद को मैं या हम लिखूं मैं। यही बेहतर है हम दोनों के हक में कि जितना हो सके कम कम लिखूं मैं। यूं ही होती रहे शेरों की आमद, तुम्हें सोचूं तुम्हें हर दम लिखूं मैं। तेरी बातें जमाने को सुनाऊं, तेरी बातें जमाने को सुनाऊं, हुई जो गुफ्तगू बाहम लिखूं मैं। अरे भी हम पढ़े लिखे होते तो हम भी लिखते, बस हम तो बोलना ही जानते हैं, जितना थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं 10 बजे तक बोल बाल के चले जाते हैं। आप बताइए कैसे हैं? बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छा लगा, आप ही के नाम गीतों में क्या कॉमन है, बहुत सारे लोग सही जवाब बात भिजवा चुके हैं और एक दो मछलियां जाल में भी फंस चुकी हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.9 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m. Like a gold. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: माया भाईनी मौजमाणवा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
3: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS।
2: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
3: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए
11: आइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
11: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
13: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
14: ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी, एन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
16: सोना ज्वेलर्स .co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफ टाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट। 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट। कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 02085101111.
17: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. 3 days to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: खुशबू से भरी शाम में जुगनू के कलम से, खुशबू से भरी शाम में जुगनू के कलम से एक पत्र तेरे वास्ते लिखेंगे किसी दिन।
0: This is Like a Gold.
2: और Like a Gold पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partners Like a Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday 27th September. Doors open at 4:30 PM with a student pre-show from 5 PM to 5:45 PM and the main performance स्टार्ट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM टिकट्स का बंदोबस्त कर लीजिए diwalistory.com के जरिए। भूलिएगा नहीं, फिर न कहिएगा हमने बताया नहीं।
3: चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे।

0: और नाम से याद आया कि बेशुमार नाम है और जिन्हें प्रोग्राम में शामिल करना है, लेकिन ये बता दूं कि अगर चिट्ठी सैया जी को लिख रहे हो तो सैया जी को ये भी बता दूं कि स्पाइस विलेज हैरो जो है वो भी उनका इंतजार कर रहा है, वो आए तो हमें लेकर जाएं। हैरो वेलकम्स द अराइवल ऑफ स्पाइस विलेज ओपनिंग दिस फ्राइडे फ्रॉम 5 PM एट 1 & 4 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड। गेस्ट कैन एंजॉय सिजलिंग मिक्स ग्रिल, सिग्नेचर मसाला फिश, रिच कड़ाहीज, फ्रेश नान स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर, एंड देयर इज आल्सो एन एक्सटेंसिव वेजिटेरियन मेन्यू प्रिपेयर्ड इन अ सेपरेट वेजिटेरियन किचन अलोंग साइड पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड जिसमें शामिल है वड़ा पाव, भेल और चिली मोगो। स्पाइस विलेज हैरो लिख देना सैया जी को, प्लीज भूलना नहीं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards. Big smiles. Atal and Avta protected. T's and C's apply. See website for details.
1: Anisa Nasir. Live across Greater London with The Big Show. Like a
3: gold. Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन Travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट Travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट Travelhubworld.com।
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07468

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एंड अलेक्सा।

0: और मैं सोच रही हूँ शायरी करूँ, मैसेजेस आप तक पहुँचाऊँ या आप लोगों के नाम लूँ। मेरा ख्याल है सब कुछ छोड़ा जा सकता है लेकिन आपके नाम नहीं। बड़ी बेसब्री बेताबी से इंतज़ार हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोग जिनको इतना भी नहीं पता कि मैंने एक नाम भी नहीं अभी लिया, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा भी तो मैसेज ठीक था, हमारा जवाब ठीक था। अरे बहन, अभी तो एक नाम भी नहीं लिया मैंने। लीजिए, अब मैं शुरू हो रही हूँ, देखती हूँ एक सांस में कितने नाम मैं ले सकती हूँ। तो आपको बता दें, सबसे पहले दीनी जी आपने पूछा कि गीतों में क्या कॉमन है। वेल डन फवाद जी, चौधरी फरीद अहमद जी, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी, नंबर एंडिंग विद 438, मनु जी, तोची जी, ओम प्रकाश लाल जी, मकबूल जी, अंजुम जी, गीता हर्षद जोशी जी, उमर जी दुबई से, कविता कुमार जी जर्मनी से, मंजीत संगर जी डुबना जी लाहौर से, अजिंक्या जी, रानी जी, सोबत खान जी, सईदा जी, संध्या भावसर जी, वीना जी, हरप्रीत जी वैनकूवर से, तारिक राहिल जी, विजय गुडोरी जी, गुल जी, उल्लास जी, नीलेश जी, सलमा जी, अमिता जी, महेंद्र पटेल जी, दिनेश पोपड़ जी, दिलीप सरोज जी, मीरा जी, एक राधा एक मीरा, लेकिन राधा जी ने नहीं, मीरा जी ने भिजवाया है, बिल्कुल सही जवाब। मीना शाह जी आपका भी जवाब सही है, और सैम शहजाद जी आपका भी।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 371.3 Pakistani rupees, 86.8 Afghani, 128.5 Indian rupees, 164.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: रुखसाना अफजल जी, नहीं यार, यार कॉमन नहीं है, मिसेस के दर्द भी कॉमन नहीं है। अरुणा जी आपका भी जवाब सही नहीं है, लेकिन थैंक्स फॉर ट्राइंग।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।

दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज, मैंने रगों के दश्त में पाले तुम्हारे खत। रीटा जी, रोहित जी, निमी जी, ताहिर जी, आपके जवाब भी सही हैं। गुड

0: प्यार है,
1: अरे पापा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Is inkaar mein bhi kitna gehra ikrar chupa tha. और रुखसाना अफजल जी फरमाती हैं कि मोहब्बत मुझ पे उतरी है सुहानी शाम की मानिंद, मोहब्बत मुझ पे उतरी है सुहानी शाम की मानिंद, कि मन जिसमें लगा रहता है वैसे काम की मानिंद, बहुत मसरूफ़ है उम्रे रवां फिर भी मुझे हर दम, बहुत मसरूफ़ है उम्रे रवां फिर भी मुझे हर दम तेरा एहसास रहता है किसी इल्हाम की मानिंद, मेरी सांसों में बिखरी है तेरे एहसास की खुशबू, मेरे अतराफ में है तू गुले गुम नाम की मानिंद, क्या बात है।
2: ये है लाइका गोल्ड। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
4: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. So, zarur contact kijiye unke bolke aaj hi kar lijiye Southall Travel ko on 0208-574-8410 par. Southall Travel yaad rahe is it all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: और भी बता दें आपको कि हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर कुलबीर सिंह जी राजा बन चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर मीनाक्षी जी, गीता हर्षद जोशी जी, अजिंकिया जी, संध्या भावसर जी, हमारे प्यारे करसन पिंडोरिया जी, सारे प्रोग्राम में चाहे हमें मुंह लगाएं ना लगाएं, लेकिन ये उल्टे पुल्टे का जवाब देना कभी नहीं भूलते, कभी कभार हो जाता है जब बिजी होते हैं, तो अदरवाइज थैंक यू वेरी मच करसन पिंडोरिया जी, सईदा जी और प्रुथा भवे जी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, मोहम्मद अयूब चौहान जी आपका भी, फवाद जी एक ही जवाब भेजा जे, इस तो चंगा तो कह दें दे, मेरे वालों साफ जवाब है।
2: Elisa Nasir, live across Greater London with the Big Show.

हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, उनको मालूम नहीं हिजर की तकलीफ है क्या, उनको मालूम नहीं हिजर की तकलीफ है क्या, वो तो फरमान सुनाते हैं चले जाते हैं, दर्द इतना है कि सीने से लिपटना चाहूं, और वो हाथ मिलाते हैं चले जाते हैं। Like a gold ace five. Hey there, मैं हूं

0: संडे 13 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जारी रहेगा अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM यानी कल तक. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द हॉट जियो हॉटस्टार ऐप नाउ. जियो हॉटस्टार जो है वो ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप. यही या कुछ और भी कहना था? हाँ, जिंकिया जी कुछ कह रहे हैं. जिंकिया जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स यू आर प्लेइंग, आई डिडंट रियलाइज बट ऑलरेडी 1 hour 30 minutes आर ऑलरेडी गॉन. नजर लगाएंगे क्या? पॉडकास्ट अपडेट. जी हाँ, पॉडकास्ट अपडेट भी आपको दे देते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसको होस्ट किया है खुश ने, और उन्होंने बात करनी है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजिंग डेट्स. और ये बात होगी उनकी, एक्चुअली मेरे सामने वो नहीं थी डिटेल, इसलिए जितना रट्टा हुआ था उतना बता दिया. उनकी बात होगी मिनाल सांबरे के साथ. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो देखना हरगिज मत भूलिएगा. Like extra is here. This is Anisa Nasir with the big show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
4: Oh, terrible weather.
3: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
5: See ya, good luck with the interview.
4: Oh, thank you, bye.
3: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, we talk myths and misconceptions about raising debts, where Kush speaks to Meenal.
13: A right kind of leverage on your balance sheet is actually good. You cannot grow your business without having a good debt. Debt is not an enemy of your business.
12: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। खुद ब खुद नींद सी आंखों में घुली जाती है, महकी महकी है शबे गम तेरे बालों की तरह। तारिक राहिल जी, मैं भी सोच रही थी कि ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती। अब तो जो बनता है उनको आप फिल्में कहते हैं, उनको फिल्में कहा जा सकता है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, आपका मेरे साथ इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरे और तारिक साहब के ख्याल काफ़ी मिलते जुलते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 371.3 Pakistani rupees, 86.9 Afghani, 128.5 Indian rupees, 164.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LAIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: अरुणा शाह जी, अच्छा लगा जानकर के आपको भी गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी के सब भी आपके नाम कर देते हैं। और एक ख़ास तौर पर गीत जो है हमारा उल्टा पुल्टा, तो ची जी वेल डन, आपने भी उसे बूझ लिया है। मैं दोहरा देती हूँ आखिरी चांस है, क्योंकि पंजाबी तड़के के बाद हम उल्टा पुल्टा ही सीधे साधे तरीके से आप तक पहुँचाएँगे। रस्में ये कस्में जिस जगह याद जग छोड़ के, कितनी अच्छी हूं मैं, जरा भी आपको तकलीफ नहीं देती।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड। पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: ए नहीं हो सजना उसूल प्यार दे, टक्कना जे नहीं हो सानू गोली मार दे। जरा गौर करें कितने सादा लेकिन कितने प्यारे अल्फाज। साड़ी कोलो मुखड़ा लुकाउण वाले हो, ए भी दस दियो शर्माउण वाले हो, पाया सी प्यार लुक छुप जाण ने। सजना ने बूए अगे चिकताण ली भरिया मेला था फिल्म का नाम और इतनी हरी भरी आवाज वन एंड ओनली मसूद राणा जी की। और आजकल तो किसी को ये गीत सुनाओ आज की जनरेशन को तो कहते व्हाट इज चिक। हाय हाय हुण इन्हां नूं की दसीए चिक की हुंदा।
1: Anisa Nasir with the big show weeknights from 7 p.m. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
4: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
3: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
4: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Vegan and Regrow.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Anisa Nasir with the big show. Weeknights from 7 p.m.

ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा, है ना, व्हाट अ सॉन्ग। यार बेजार है यूं मुझ में सिसकता हुआ दुख, यार बेजार है यूं मुझ में सिसकता हुआ दुख, आंख से बहता नहीं दिल पे गुजरता हुआ दुख। मैं तेरे बाद जरा सोच, मैं तेरे बाद जरा सोच किधर जाऊंगा, मैं तेरे बाद जरा सोच किधर जाऊंगा, कौन लेता है किसी और का छोड़ा हुआ दुख। यार बेजार है मुझ में ये सिसकता हुआ दुख, आंख से बहता नहीं दिल पे गुजरता हुआ दुख। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के इख्तिताम तक हम पहुंच गए। प्रोग्राम का एक दौर अभी और भी बाकी है, साथ निभाइएगा। और एक और बहुत ही इमोशनल सा गीत, तू हमें उन दिनों में क्यों ना मिला जब हमें शौक थे संवरने के। गुड इवनिंग, ये लाइका गोल्ड है और मैं, ओ छंडो जी पता है तानू,

0: और कमाल तो कर गए, अपनी अदाकारी के दिखा गए जौहर, वन एंड ओनली शशि कपूर जी। आज भी हम याद करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये गीत आई वॉज होपिंग के मुझे मिल जाए सुनवाने को मेरा कोई साथी पहले प्ले ना कर ले कोई कोई गीत होता है ऐसा जो मुझे पता होता है कि मेरे सुनने वालों को बहुत भाएगा और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। लीजिए आप तक तो मुझे कुछ और भी पहुँचाना है। बिग बॉस जैसा कि आप जानते ही एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुका है। बाय द वे तारिक साहब, मुझे ये बताने के लिए बेहद शुक्रिया कि आज वेंसडे बस मेरे आंसू नहीं निकले, बाकी सभी कुछ हुआ। मैं तो एक दिन आगे चल रही थी, मैं सोची थी आज थर्सडे है। कोई बात नहीं जी, जम जम आए थर्सडे आए कल, आज वेंसडे है तो क्या हुआ, कल थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर थैंक गॉड के सैटरडे आएगा। देखा, फ्राइडे को मैंने आज भी नहीं कहा कि थैंक गॉड इज फ्राइडे। मैं ऐसा थोड़ी सोचती हूँ कि आपसे दूर जाऊँ, ये तो मतलब जाना पड़ता है ना। राइट, तो हम कर रहे थे बात बिग बॉस की। अरे भाई क्या बात करें, मैं तो आपको क्या बताऊँ, अर्शिफा ने जो हंगामा मचाया है टास्क के दौरान और जो अमरपाली जी पूरी कर रही हैं, बस पूछो मत, खुद देखिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, वीकेंड का वार भी आने वाला है, सलमान खान होस्ट करेंगे शो को, एवरीडे एयर किया जाता है 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार जो है स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड बिग बॉस 20 के घर से डायरेक्ट। जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और अब हम शामिल कर रहे हैं कमल भगत जी की फरमाइश, ऑल द वे फ्रॉम जालंधर इंडिया से आपका मैसेज हमेशा साथ निभाते हैं, जब जब सुनते हैं इस बात का एहसास भी दिलाते हैं। बेहद शुक्रिया आपकी बहुत ही फेवरेट मूवी संगम से ये प्यारा सा गीत आपके भी और सभी सुनने वालों के भी नाम। रजाई यार पे ख्वाहिश को वारने वाले, अजब सखी हैं मोहब्बत में हारने वाले।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Tere ishq ne bakhshi hai ye saugaat musalsal, tera zikr hamesha, teri baat musalsal. Main mohabbat mein us maqam pe hoon jahan मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। कमल भगत जी की रसीद भी आ गई, बेहद शुक्रिया इतनी देर रात गए तक जाकर प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए। और लीजिए अब एक पैगाम मैं आप सभी के नाम कर दूं, आपको बता दूं, लखवे

0: सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
1: दिस इज अनीस नासिर विद द बिग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com.
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: विजिट travelhubworld.com.
2: Two businesses,
3: same town,
2: same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मां जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 2287509.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Sangeet Sadhana. Sadhana. Sangeet Atma Ki Aawaz.
9: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं.
10: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए.
11: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
12: सारे गामा पा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 बजे UK आपके अपने ZTV HD और Z5 ऐप पर.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Forgotten memories refreshed. Like a gold.
13: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: बख्शी जी क्या गीत सुनाया आपने, सभी कह रहे हैं क्या बात है क्या बात है। बख्शी जी को थैंक्स करें जिनकी पसंद का गीत आप सुन रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 128.5 Indian rupees, 86.7 Afghan afghani, 371.1 Pakistani rupees, 164.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और महेंद्र पटेल जी ने भी बड़े डांसिंग इमोजेस भिजवाए हैं, इसका मतलब है कि उनको भी गीत अच्छे लग रहे हैं। और एक मैसेज अभी अभी मुझ तक पहुंचा है, जेड इलाही जी, कहीं आपका नाम जिल्ले इलाही तो नहीं है? तो आपने भी कहा कि आपको गीत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी खूबसूरत यादें आपकी जो हैं इनसे जुड़ी हैं, बेहद शुक्रिया। यही तो सारी बात है, गाने कौन सुनता है, अपनी यादों को याद किया जाता है, उन लोगों को याद किया जाता है जिनसे वो यादें जुड़ी होती हैं। क्यों, मैं कोई झूठ बोलिया? अजिंक्या जी कहते हैं आपका प्रोग्राम सुनता रहना तो मैं मतलब पंजाबी भी सीख जाऊंगा। गुड, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सिखा रही हूँ मैं। लीजिए, प्रोग्राम का अगला गीत होगा फ्रॉम लॉलीवुड विद लव। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक सुनना हरगिज हरगिज मत भूलिएगा। और काजल याद है ना, ब्रेकफास्ट लेके हाजिर रहती हैं, तो वो भी कल आ जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पूरे नेटवर्क में जो हैं वो लाइव शोज आपके लिए जारी और सारी रहते हैं, तो जहाँ जहाँ मौका मिले, जिस जिस का मौका मिले, उसे ज़रूर सुनिएगा। राइट, तो बात हो रही थी अगले गीत की जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तानी फिल्म इश्क पर जोर नहीं से लिया है साईं अख्तर जी और माला जी की आवाजों में, आइए सुनते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM
1: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव विद अनीसा।

0: मुझ में बसने वाले शख्स ने मुझ में रहना छोड़ दिया, उसने मेरी बात न मानी, मैंने कहना छोड़ दिया। तुम जैसे मर्जी सोचो पर लोग तो सब कुछ जानते हैं, तुम जैसे मर्जी सोचो पर लोग तो सब कुछ जानते हैं, किसने कितना साथ निभाया और किसने कितना छोड़ दिया। अब वो वक्त है जब मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, आपको थैंक्स बोलना है, धन्यवाद देना है थ्रू आउट द शो मेरा साथ निभाने के लिए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम में शामिल गीत, शायरी, बातें, गपशप सब पसंद आया होगा, नहीं तो कल मैं फिर कोशिश करूँगी। ओ संध्या जी, मेरे मुंह से निकल गया कि आज जो है वो थर्सडे समझ रही थी मैं, इसलिए गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, मुझे माफ़ कर दें, कल आती हूँ। शब खैर, शुभरात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: This is Anisa Nasir with the big show. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, Auto Protected.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
10: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
13: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Gold Nights on Leica Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
10: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
11: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations.

0: questions on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: जोड़ा।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल Auto protected.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
11: रात भर न थमी न रुकी, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Nike Gold.
1: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड।
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।